气声里靠拢，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。木嫩的脖子盖大拿，大拿那塞的恰巴蒂，塞克拉格里恰巴蒂塞克拉格尔大拿，可怜呢，嘎巴克格尼德里恰巴蒂刚有呢，可乐到了死，靠拢爸爸。रेडोन बसलो या कनिये चेनीत आमी हैरान चसुबी तुत रंक बुल चेनई देव बरे करो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: निकली है दिल से ये दुआ।
2: हाय नानी मनिहाल तावरो न्यू केरताई दिरा रेडियो सारंग 107.8 FM बन्ना बन्ना द बदुकलो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शौक रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत थी जन्नत है।

0: महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम मेरे महबूब तुझे।
1: रेडियो सारा 107.8 FM।